0: अरे भाई रे शामी
1: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु अय्या
0: खो गया दिल मेरा सुकु सुकु खो गया दिल मेरा Pick this up, Shankar Jaikishan. Check it out.